गुरु रोज कहिंदा चुगली ना करी, गुरु रोज कहिंदा परका बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई। की अपने आप नु शीशे विच कदी खिला रहे हो? अपने आप नु पुछो नी मेरी ये जिंदड़िए मैं किसे दा बुरा नहीं करदी, मैं छड़ता गुरु दे कहण ते बुरा? बेड़े ते उन्हां दे पार होने ने गुरु दे प्यारे हो जिन्हां गुरु दी मत लई आ ते उहदे उत्ते चले ने। केवल सुननी नहीं, सुनिया फिर दूसरी अवस्था मनिया, सुनिया ते फिर ओ गुरु दे बचना नाल मन कीता भाओ मैंने प्रेम। असि ते गुरु नू गुरमुख प्यारे हो जितना हजारां सालां तो टल खड़कण वाले पंडित कदी मंदरां दे विच आउंदे सी प्रसाद चढ़ाउणे मूर्ति दे अगे राके लै जाणे, ना मूर्ति ने दुध पीना, ओह दुध आप जाके घर पी लेना, आण के टल खड़का लेने ते कहना असीं पूजा करके आए। आखो सतनाम श्री बाहर देव पखालीए, बारों देव नूं बाहर दे देवतियां नूं नवाउणा ही सिख्या पड़ता वांग। आपां वी गुरुद्वारे आउणे आ लंगर छकदे आ, इहना गुस्सा ना करना कि रोज लंगर ते तवा लाउंदा है। मेरा कहने का मकसद यह आ कि गुरु कोल जितना दे आए हो ना मेरे वीरो, जदों जांदे हो इतना दे जाओ ना, कुछ ते तब्दीली होवे। चंदन का बिरवा भला बेड़े ओ टाक भलास, वो भी चंदन होए रहे बसे जो इथो तुसी मुड़ो। ते जदों गुरु दे प्यारे हो मुड़ के जाओ ना ते तुहानू मिलने वाला कोई आपे ही पुछे वो तू कित्थों आए, तेरी रसना ते अमृत आ गया, तेरिया अखां विच शर्म आ गई, तेरे कान कहिंदे ने मैं चुगली नहीं सुननी, तेरे हाथ कहिंदे ने मैं शराब नहीं फड़नी, तेरा मुंह कहिंदा मैं मांस नहीं खाना, आखिर तू आया कित्थों आ? लोकी पुछण तुहानू भी तुसी कित्थों आए हो, ते तुसी फिर बड़े माण नाल आखो मैं अपने गुरु कोलों आया, मैं अपने गज के एक वार आखो कित्थों आया। जदों सतगुरु गरीब नवाज पातशाह नूं सुदरसन राजा मिलिया ना प्यार नाल, एक बार आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कवल नैन राजे दा भणेवा सी ए सुदरसन, ते धन गुरु नानक पातशाह जदों दीन दुनिया दे मालक संगला दीप गए ने ना प्यार नाल अकागरता च आण के अपनी सुरत नूं गुरु दे शब्द विच जोड़ के फिर एक बार आखो सतनाम श्री वाहिगुरु, गज के आंदे हो मैनूं बल मिलदा है सतनाम श्री वाहिगुरु। संगला दी विच गरीब नवाज पातशाह जदों गए ने ते बाहर जाके मरदाने नूं कहिंदे ने मरदानिया इस पिंड विच चलिया जा, सुन वाला बड़ा प्यारा वचन है, इस पिंड विच जा ते इस पिंड दे विचकार एक खूह आऊगा ते खूह दे सज्जे हथ जिहड़ा दरवाजा है ना उस घर जावी, उत्थे इक झंडे नामी व्यक्ति रहिंदा है, ध्यान दिओ उत्थे इक झंडा बाडी नामी व्यक्ति रहिंदा है। ते जदों सारियां डायरेक्शनां दसियां ते मरदाना तुर पिया ते दो कदम ते जाके फिर मुड़ के आंदा, मेरे मन विच इक हैरानी आई आ कि सतगुरु पहली वार ते मैं उदासी ते तुहाडे नाल इस इलाके च आया, मैनू ए नहीं समझ आई, तुसी ए भी दस्या है कि पिंड दे विच इक खूह आ, खूह दे सज्जे पासे इक घर आ, उत्थे झंडा बाडी नाम दा व्यक्ति रहिंदा है, पहलो भी कदी आए हो इत्थे? ते सतगुरु हस के कहिंदे मरदानिया उहदे गुप्त बचन नहीं पुछी दे हुंदे, तू जा जिहड़े पासे तैनूं भेजिया जा उहनां नूं मिल के आ। जदों उत्थे गया ते झंडा बाडी दे कोलों जिहड़ियां वस्तु महाराज ने मंगाईयां मुड़िया ते झंडा बाडी ने इक गल कही कि ओ दिलां दियां जानण वाला, दिलां विच रौवां भरन वाला, जीवन बदल देण वाला कित्थे बैठा है? ते मरदाने ने आख्या ओ पिंड दियां मड़ियां च बैठा है, वेखो बाबे नानक दे बहण दा टिकाणा पिंड दियां मड़ियां च बैठा है। ते झंडा बाडी कहण लगा हां तुसी चलो असीं पिछे पिछे जा रहे हैं। ते हर शहर दे विच सतसंगियां दी आपो अपनी दोस्ती हुंदी आ, गुरमुख सखी सहेलियां दा प्यार हुंदा है, जे कोई तुसीं किते कीर्तन सुन जाना होवे ते किसे नूं फोन करदे आओ चलिए फलाने तां, फलाने महापुरश आए ने गुरु के प्यारे आए कथा सुन चलिए कीर्तन सुन चलिए। इसे तरह झंडे बाडी ने सुदरसैन नूं आवाज मारी, सुदरसैन आ दिलां दियां जानण वाला आ गया, जीवन बदलन वाला आ गया, दर्शन करन चलना ही। ते सुदरसैन ने मोतियां दा थाल भरिया, मोतियां दा हीरियां दा थाल भर के धन गुरु नानक पातशाह दे कोल जदों आए ते मरदाने नूं पुछिया सी झंडे बाडी ने कि जदों तेरे मालक दे कोल असीं जाइए, जितना आपां हुण गुरु गोबिंद सिंह साहिब नूं मिलना होए ते सानूं भुलणी की कि जाके की कहना है, की कहना है पातशाह नूं? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ते गुरु नानक पातशाह नूं की कहना है? झंडे बाडी नूं पुछिया ते झंडे बाडी ने मरदाने नूं पुछिया ते मरदाना कहिंदा जदों मेरे सतगुरु नूं कोई मिलण आउंदा है ना ते कहिंदे ने सत करतार बोल सत झंडे ना बोल।

0: आगे पढ़ो।
1: फरीदा इन्नी निकी जंगी थल दूगर पवियो अज फरीदा कुजड़ा सह कोहा थियोम।
0: एक गल आखरी श्लोक आप जी ने सरवण किया सी। बाबा फरीद जी दे ए विचार सन, ए बख्शिश भरिया ज्ञान सी कि ए शरीर जेड़ा इन्हे एक दिन कमजोर बुढ़िया हो जाना है। ए शरीर जजरी है, इस नो जर पहुंचे आए, इन्हे एक दिन बुजुर्ग हो जाना है। बालक ते बिरद पया, बोलो बालक ते। आ तुसी मेरे वीर 35-35, 40-40, 50-50 साल दे जेड़े बैठे हो, बचपन वेख्या, जवानी वेखी, हुण बुढ़ेपे विच आ गए, वेखदिया वेखदिया ये सब कुछ हो गया। बाबा फरीद जी भी इस तरह के पावन बचन करते ने, कहिंदे ने पिता जी, कहिंदे ने ए जिहड़ा शरीर है ना, एक दिन ते इन्ना बलवान सी कि इन्नी निक्की जंगीए निक्के निक्के कदमां दे नाल थल डूंगर पवेओम सारी धरती ते बड़े पहाड़ां नूं फिर आउंदा सां, मगर अज ए सौ वार फटकार कहीए किसे नूं ते एक त्रिग बनदी। आखो सतनाम श्री, फिर एक बार आखो सतनाम
2: श्री
0: ते तुसी सरवण करो, जे सौ वार फटकार क्या एक त्रिग बनदी। ते जिथे मेरे साहब कहिंदे ने जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास, एक थां ते मेरे कहिंदे त्रिग त्रिग खाया, आ दो वार गिण गए जे मेरे साहब। ते हुण तुसी सोच लो कि मेरे साहब कहिंदे ने उस खाना खादे नूं 200 वार फटकार, 200 वार फिटे मूह उस रोटी खादी नूं, त्रिग त्रिग खाया, त्रिग त्रिग सोया, रात नूं बिस्तरे दे उत्ते सराणा लेके रात नूं सौं गया, सोला ना पड़िया, अमृत वेला ना सवेरे उठ के संभालिया, इस सौण नूं भी 200 वार फिटकार, त्रिग त्रिग खाया, त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया। गुरु अमरदास साहब कहिंदे ने 200 वार फटकार, ए 5-5 हजार दे पाए सूटां नूं, जेड़े सूट पाके कदी सूट देने वाले नूं याद ना कीता। आखो सतनाम श्री। मेरे साहब जी इत्थे त्रिग शब्द बाबा फरीद जी ने वरत्या, कहिंदे त्रिग तिन्हां का जीविया, उन्हां दा जीवन तरकां ते आ, उन्हां दे जीवन नूं त्रिगिया फटकारिया, किन्हां दे नूं जिन्हां वडाणी आस, वडाणी हुंदा है पराई आस उत्ते बहना, किसे दी आस उत्ते जीवन बतीत करना। अज ते मेरे पंथ कोलों अपना आप सामना औखा ही हो गया, कदी कोई मेरे वर्गा गोल पग वाला आ गया उन्हूं आख्या बाबा जी पेट्रोल पंप लाउणा है, बचन छड्डो, ते ओ भी मेरे वर्गे ठग फिर बचन छड्डदे ने, ओ भी नहीं कहिंदे कि गुरमुखा मन की बिरथा होए सो गुर पे अरदास कर, बोलो मन की बिरथा होए, जे ओ तेरे मन की बिरथा वा, जो तेरे मन की भावना अपने गुरु नूं कहो ओ पूरी करूगा। मैं एक वचन करदा हुंना, तुसी ध्यान दिओ, एकाग्रता थोड़ी जी बख्शियो, जदों तुसी किसे कोलों अरदास कराउंदे हो, एक बार आखो सतनाम श्री, जदों अरदास कराउण लगे सो ते तुसी खलोते सो ते सामने गुरु सी, किन्ने जाने सो तुसी ते गुरु, किन्ने हो गए? दो हो गए ना, बोलो डरो ना, किन्ने हो गए? दो हो गए। एक बाबा लभ लिया गोल पग वाला मेरे वर्गा, उन्हूं आख्या बाबा जी मेरी अरदास करो, वह विच खलो गया, हुण किन्ने हो गए? तीन हो गए। तुसी पछा अगे खलोगे अरदास वाले के पिछे? ते फिर पछा होए ना गुरु तो, अगे अगे तो दूरी वधी ना। फिर इस बाबे की अरदास ना पूरी हुई, फिर तीसरा होर बाबा लब्भा, उन्हूं आख्या जी एक ने तो अरदास नहीं पूरी की, तुसी करो, फिर किन्ने हो गए? चार हो गए। तुसी किन्ने गां होए के पिछा होए? होस बाबे तो फिर भी पिछे रहना, तुसी जिहदे कोलों अरदास कराई। इस तरह ही आपां अरदासिया विच पा पा के अपने गुरु तो दूर हो गए, जिन्ने कोल हो गए अपनी अरदास आप करो। मेरा सतगुरु सद सुनदा सद वेखदा, क्यों मुकर पाया जाए? ते महापुरुषां नूं ते कहा सी अरदास करनी किनूं आउंदी आ, जिन्ने कहिंदे अरदास ओदी मन्नी जांदी जिन्हूं अरदास आउंदी ना होवे, जिन्हूं अरदास, जेड़ा अरदास करन दा बहुत आदि आ ओदे कोल ते शब्दां दे जाल तो बिना कख भी नहीं। अरदास शब्दां दा जाल नहीं, अरदास ते तुसी गुरु अगे खलोते हो ते अखां दे विचों त्रिप त्रिप जल वग रहा होवे, तुहाडी जीभा ना बोल रही होवे, तुहाडी भावना गुरु दे अगे बोल रही होवे, जीभा गल्लां ना बोतियां करे। ये की कह रहे जी मैं पापी बना वा, तुसी बख्शन वाले हो, ये तुसी दस के उन्हूं दसना है कि तुसी पापी बड़े हो, ये असी दसना वा कि असी गुनाह गुनाह बने, वह घट घट के अंतर की जानत भले।

0: अवगुण में गुण नहीं कोई, सब अवगुण में गुण नहीं कोई, सब
1: अवगुण में गुण नहीं कोई, सब अवगुण में

सचेत हो सतगुरु गुरु नानक पातशाह दी पावन बाणी दे कि जे तेरी गठड़ी दे विच गुण होए जे तेरी गठड़ी दे विच परम पिता परमेश्वर दी बख्शी रहत होई ते परमेश्वर आप तेनु कहूगा आ खालसा मेरो रूप है खालसे मैं हूं करूं आ प्यार नाल आण के दोवे बावां पहाड़ पहाड़ जिहड़ियां भारी भजान के भारी भरोसो वड्डियां बावां वाला बापू आखूगा खालसा मेरो पिंड प्राण खालसा मेरी जान की मगरों ता आखूगा जे तू गुणा दी मालक होएगी ते अवगुण वाली नू ते मेरे साहब कहिंदे मेरे कंत न भावे चोलड़ा प्यारे क्यों धन छेजे जाए मेरे साहब कहिंदे ने अवगुण यारी कंत न भावे बोलो अवगुण यारी सारे बोलो जरा अवगुण यारी मन की खोटी खोट कमावे मन की खोटी अवगुण यारी उस मालक नू चंगी लगदी नहीं मन दी खोटी खोट कर दिया फिर का सावना जाने मूड़ा अंदरों पिरदा सा ओदा सुभा नू इन्हें जानिया ही नहीं कि मेरा पति ते उन्हां नाल प्यार करदा जिहड़ियां गुणवंती ने जिहड़ियां गुणां दीआं मालक ने ते आपां इस करके गुरमुख प्यारिओ मेरे सतगुरु दे चरणां विच बेनती करनी आ कि आपां नू सतगुरु गरीब नवाज जी कृपा करो निर्गुण यारे गुण नानके निर्गुण यारे गुण नानके हे मेरे सतगुरु गरीब नवाज मैं निर्गुण यार वां मेरी झोली दे विच गुणा दी दात पा जेड़े गुणा दा जेड़ी रहत जेड़े नाम सिमरन बंदगी जेड़े जीवन दा सदका मेरा ते तेरा विछड़े दा मलाप हो जाए वोहे

0: आखो सतनाम श्री नाभी चो खिंच के आखो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: कलयुग में एक नाम आधार, बोलो कलयुग में एक, फिर बोलो कलयुग में एक
1: नाम,
0: एक नाम आधार। कलयुग दे विच एक नाम ही आसरा है। धन गुरु अमरदास महाराज दा पावन बचन पिया करो, घट घट कर दे साचा नाम मेरा आधारो, आसरा है मेरा सच्चा नाम, सच्चा नाम मेरा बेस है, सच्चा नाम मेरी टेक है, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा, फिर बोलो जिन भुखा, एक बार रोम रोम दे दरवाजे खोल के आखो जिन भुखा, सच्चे नाम दी वडियाई जिन भुखा, सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इशा सदा कुर्बान कीता गुर विटो, जिस दिया ए

हाथ जोड़ो सतगुरु दे चरणा च तरला पाओ, सतगुरु ए जलदे बलदे संसार चो अपना ओट आसरा दे के बचाला। आओ हुण लड़ीवार जो कथा आरंभिया, सतगुरु दी पावन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह दे मुबारक बचन आप जी सरवण करने। पहलो आप जी नूं पुछ लवां घरां दे विच की बोलना है जी, सारे दस्यो की बोलना है। किते इस तरह ना होवे कि जिस तरह तोतियां दी डार नूं किसे ने एक तोता किसे रख लिया ते उन्हूं महारनी पका ली भी तोतिया पोस्त नहीं खाना, ध्यान दिओ तोतिया पोस्त नहीं खाना। एक दिन वह तोतियां दी डार विच उड के रल गया, सारिया नूं महारनी पकाती तोतिया पोस्त नहीं खाना, ते सारे ही तोते उडदे उडदे जाके एक पोस्त दे खेत विच बह गए, ते सारिया ने चुंझां भरियां पोस्त खाई जांदे ने, ते जेदी चुंझ खाली होई जांदी उह आखी जांदा वा तोतिया पोस्त ना खाई मर्जी दा है, नाले खाई जांदे ने गुरमुखो, नाले अंग्रेजी ना किते न्याणे ना बोली जायो ते नाले आखी जायो पंजाबी बोलनी, इस तरह का नहीं। बार भुलो जिथे तुहाडा नहीं सरदा, मगर अपनी औलाद दे कन्नां विच ए छैत वर्गी मिठी गुरमुखी पाओ, घर विच पंजाबी बोलो, पंजाबी लिखणी बच्चां नूं सिखाओ, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी नाल जोड़ो। आओ हुण बाबा फरीद जी दी रसना तो मुबारक भजन सरवण करिए जी।

0: सच जुड़ के आखो आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच अगम अगुच सच साहेब मेरा सच साहेब मेरा सच साहेब मेरा नानक बोले बुलाया तेरा नानक बोले
1: बुलाया तेरा
0: ज्यो बुला मैं त्यों बोला स्वामी कुदरत कवन हमारी ज्यों बुलावे त्यों बोला स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह गुरु प्यारे गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह तनता दे जोग जे जो तन गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह दे दर्शन दरबार करके तन हो रहे हो भाई गुरुदास जी का एक पावन वचन सारे पढ़िए सतगुर दर्शन धन है सतगुर दर्शन धन है
1: सतगुर दर्शन धन है सतगुर दर्शन

0: सारे आखो सारे ही
1: तेरी परिया गोविंद मिलन की तेरी परिया।
0: ते हुण आपां व्यापार करन आया, एक बचन गुरबाणी दे विच मेरे साहब ने बहुत कीमती, वैसे ते एक एक बचन कीमती, गुरबाणी सारी हीरिया मोतिया जवाहरां नाल मड़ी, गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। एक शब्द बड़ा प्यारा मेरे साहब जी ने प्यारा वचन किया है, कहिंदे तां व्यापारी जानिए, बोलो तां व्यापारी, व्यापारी शब्द बड़ा पछाणिया तुहाडा, तां तुसीं व्यापार करन ते सारे ही आए हो, हर बंदा घरों व्यापार करन जांदा है, मगर जेड़ा घाटा खा के चल जाए ना मेरे मित्रो गुरसिखो भाईओ, ते उन्हू लोकी कहिंदे नहीं इनू व्यापार करना आया ही नहीं, जेड़ा घाटा खा के चल तां वा गुरमुख प्यारे हो के कुछ तां व्यापारी जानिए लाहा लै जाओ, लाहा व्यापारी ते तां ही किसे कहना लै भी इहदे प्यो ने 10 रुपया की रास पा के दिती सी, ये 10 दे नाल 100 कमा के लाया, बड़ा वड्डा व्यापारी है, मगर आपां नूं ते गुरमुखो मूल दिता परमेश्वर ने सुवास, आखिया एक एक सुवास दे नाल परमेश्वर की बंदगी करके लाहा खट के आई, मगर इथों कोई गुरमुख रूहां ते लाहा खट के चले गईयां, मगर मेरे वर्गे मनमुख प्यारे जेड़े मनमुख दियां गल्लां मन दियां गल्लां सुनदे रहे, मन पिछे लगे रहे, गुरु दी गल ना सुनी, ए ना सुनिया पीवो पौल खंडे धार होए जन्म सोयला, ते मन दियां गल्लां सुनिया के शराब पीला, जेड़े मन दियां गल्लां सुनदे रहे, मेरे साहब कहिंदे चले मूल गवाए मनमुख।

0: भाई रे, राम कहो बोलो भाई रे,
1: राम कहो
0: चित लाए। हर जस वखर लै चलो, इथो जान लगे पंडा बन के जाओ, इथो जाके लाद खेप संत संग चाल, जिस वखर को लैण तू आया, राम नाम संतन घर पाया, ताजब मान लिहो मन मोल, राम नाम हिरदे में लाद खेप गड्डे लद के, जदों सरकारे दरबारे जावे तू निरंकार दे दरबार विच, उथो तक तेरे गड्डे खलोते होण, ते पुछण भाई कौन आया है, ते आखणे पजनीक सिंह आया है, ए जरनैल सिंह आया है, ए रजिंदर सिंह आया है, ए गुरु का प्यारा आया है, की करके जी ए गड्डियां दे विच की भरिया है, ते किते ऐसा ना होवे फोल फोल के वेखिए ते विचों चुगलियां निकलण, विचों निंदिया गड्डे ते दोवां दे लदे जाने ने, चंगियाईयां बुरियाईयां बोलो चंगियाईयां, फिर एक बार आखो कादे गड्डे लदे जाने, चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे धर्म हजूर, उस धर्म दी हजूरी विच जाके धर्मराज दे हजूर विच दो ही चीजां ते परखियां जानियां बंदिया, तेरिया चंगे ते मंदे कर्म, ते वेख कोई एहो जिहा कर्म कर, तेरी एक एक पंड दे विचों निकले सतनाम श्री वाहिगुरु, तेरी एक एक कहो नानक समझ रे आने, आज काल खुले तेरी गांठुली, बोलो आज काल खुले तेरी, आ बचन जरा चंगी तरह बोलो कि अज जा कल उथे जाके तेरी गठली खुलनी, गांठुली गांठुली मैने गठ, इथो जज हुंदा बाणी विच मेरे साहब कहिंदे ने कि गठा मार रहा बंदा, हर रोज इहदियां गठा बन रही ने, ते कहिंदे कहो नानक समझ रे आने, बोलो कहो नानक समझ रे, हे मेरे आने मना, हे आने जीव, ए गल समझ ला कि आज काल खुले तेरी गांठुली, बोलो आज काल खुले तेरी, उथे निरंकार दे दरबार च तेरी गठ खुलनी है, चेता कर उस गठ दे विचों की निकलूगा, किते चुगलियां ना निकलन, किते निंदिया ना निकले, किते शराब दियां बोतलां ना निकलन, किते मास ना निकले, किते कुकर्म ना निकलन, जेड़ी जेड़ी तेरी गंढ परमेश्वर खोले उहदे विचों निकले सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु, सत
1: नाम वाहे गुरु,
0: भैणों गज के
1: नाम वाहे गुरु,
0: मेरियां धीआं गज के जरा बोल।

वाह वाह वाह वाह वाह, अच्छा ऐनी प्यास लग गई हो, ऐनी अंदर तड़प पैदा हुई हो, ऐनी वे तो बिना उदास हो गई है, सिर देने नु तैयार है। आंदी हां सजना नैन हमारे तेरे आ रंग रंगारे, मेरिया अखां उहदे रंग विच रतियां गई ने, 24 घंटे होर किसे नु नहीं देख दिया, ये 24 घंटे गाउंदियां ने, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी पावां तरला तुसी भी, एक भोरी दर्शन दी जय, एक

लोभ लभाया मोरी रुण चुन लाया भैने सावण आया। ते पिछे जाके एक बचन मेरे साहब ने बड़ा सुंदर कीता है, कहिंदे एक दिन फिर ओ सुपने विच आ गया। आखो सतनाम श्री, आया सुपने विच, ध्यान देना एकाग्रता बख्शो, सुपने च आया, सुपने च, सुपने आया, बोलो सुपने। ए बड़े दिनां दी कहिंदी सी मैं दर्शन करने दर्शन करने, ओ सुपने च आया, सुपने च आया, ते कुछ छिन दर्शन ददार दे के कोल बह के चले गया। सुपने आया पी गया, जिन्ना चिर नहीं सी वेख्या उन्ना चिर गल होर सी, सुपने विच झलक विखा के चले गया। हुण रोंदी आ मैं जल भरिया, रोए अखा च जल त्रप त्रप वगी जांदा है, ते कहिंदी आ हुण करां की, सुपने च ते मिलिया चले गया, हुण आए ना सका तुझ कन प्यारे, भेज ना सका कोई तेरे कोल, ना कोई सुना भेज सकदियां ना मैं आ सकदियां, क्योंकि पता नहीं तू रहिंदा किथे आ। हुण ते रात दिन किसे वजोग च कहिंदी आ, धन सो देश जहां तू वसिया।

सोहेला हो जन्म सोहेला हो ते फिर घर खड़िया उन्हें मेनू वखाया अजीबो करीब मंजा रखिया है मंजे दे उत्ते बलविंदर सिंह दी फोटो लाई फोटो दे कोल चौर रखिया है मैं क्या वो कदी आया है कहिंदा आया मेरे घर मैं क्या ओदे सामने ओदी फोटो दे चौर करदा सा कहिंदा जी ओदी सामने ओदी फोटो दे चौर करदा सा आखिर मन विच की छुपिया इन्हां लोकां दे शर्म भी नहीं आउंदी लज्जा भी नहीं आउंदी एक बंदा होके मेरी फोटो दे उत्ते कोई चौर करे चलो मगरों कोई अज्ञानी करे चवर तखत मालक ते धरती ते इको या गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जे ते चौर हो सकता है होर किसे ते चौर नहीं हो सकता 1978 दे विच जिहड़े 13 सिखा गुरमुख प्यारिया ने शहीदी पाई सी इसे करके पाई सी कि निरंकारी बाबा अपने सिर ते चौर करवाउंदा सी कहिंदे असीं नहीं वेखणा चौर हो सकता है ते केवल गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते हो सकता है ते गुरमुख प्यारे इहदी फोटो दे उत्ते उहने चौर रखे ते चौर करदा है ते मालक दे गुटके उहने मंजी दे थले रखे जांदियां दास ने पहलो मारी फोटो भवां के उहदी चुक के ते फोटो सुट के मैं कहा सजना इस मंजे दे उत्ते ए चादर जिहड़ी नापाक होई है दी फोटो दे नाल इहनू चुक इत्थे पवित्र चादर विछा जे गुरु दा अमृत लैणा ही ते इस मंजे दे उत्ते हुण पोथियां रख जिथे अगे फोटो सी पोथी परमेश्वर का थान ओनू थां दे जिहड़ी पोथी परमेश्वर जोगी इस करके गुरमुख प्यारे बचना है ते अंदरों अपने उस मालक लई कहना है एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्श दिखाए जी एक छिन दर्श दिखाए जी एक आओ हुण जुड़िए नाम जप लो दो छिन फिर सतगुरु गरीब नवाज पातशाह मैं आप जी नूं बेनती कर दवा नामी ताई पहुंचण ला इको ही तरीका है नाम नाम ते नामी दो चीजां दा मेल आ जे नामी दी प्राप्ति करनी आ ते नाम जपना पैना है की करना पैना है नाम जपना पैना है रात दिन अपने रोम रोम विच भरना पैना है वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु

बड़े प्यारे वचन ने, समझने की कोशिश करियो। एक बार आखो सतनाम श्री वाहे। खोजद्या खोजद्या ओ अमृत मिल गया। जेड़ा अमृत पीण दे नाल जीव अमृत अमर हो जांदा है। अमृत पीवे अमर सो होए। बोलो अमृत पीवे अमर सो होए। ए हर रस पावे जन कोए। कोई किते करोड़ां दे विच्चों नहीं ते छोटे छोटे संख्या ने अमृत तो दूर रख लेना है। जेदे ते सतगुरु गरीब नवाज बाबे नानक दा हर दरवाजा मेहर दा जेदे घर नूं खुल गया ओदी रूह ने आखना चलो अमृत छकी गुरु वाले बनी है। नहीं ते निके निके फुरनिया ने एवें निके निके फुरनिया ने गुरु दे अमृत वांझिया कर देना है। यो हर रस बोलो यो अमृत की आ हरी दा रस आ। यो हर रस पावे जन कोए। कोई दा मतलब कोई करोड़ां दे विच्चों जेदे ते मेहरबान बापू होवे ते जिन्हां नूं ए हरी दा रस मिल गया अमृत नाम आ उस हरी दे रस दा ते साहिब कहिंदे ने अमृत पीवे अमर सो होए। अमर हो गया। अमर दे अखरी अर्थ समझो अमर। अमर शब्द आपां कहिंदे कई वार बहुती वार ते पता नहीं हुंदा सानूं। अमर मरन तो रहत जिन्हें हुण मरना ही नहीं। साहब कहिंदे ने यह पक्की गल आ जिस जीव दे मूंह दे विच अमृत पै गया उन्हें नहीं मरना मुड़के। अमृत पीओ सदा चिर जीवो। हुण सदा चिर वाला जीवन मिल गया। रोज रोज दा आवा गमन मिटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुर देव। सतगुरु कहिंदे ने जिहड़ा आवागमन दा चक्कर आ जीव आत्मा दा जदों गुरु दी शरण विच आउंदी आ गुरु दी पनाह विच आउंदी आ गुरु दी बारगाह विच आण के डिग के अमृत दी दात मंगदी आ अपने बापू दे कोलों ते जन्मां दी विछड़ी होई नूं जदों अमृत मिल जांदा है उस दिन इहदा आउण जाण दा चक्कर मुट गया। आवा गमन मिटे। बोलो आवा गमन। बड़ा ढिल्ला बोलदे हो गज के बोलो। बाबा नानक तुहाडे ते मेहरबान होवे। आखरी दीवाने अज पता नहीं नदी नाम संजोगी मेले ने रस बख्शो। दास नूं भी सेवक दिओ सेवा दिओ। आवा गमन मिटे। बोलो आवा कदों प्रभ सेव जदों प्रभु दी सेवा विच हाजिर हो गया जदों आप त्याग शरण गुरदेव आपा छड के त्याग के गुरु दी शरण विच जीव आत्मा डिग पई ना आण के ते साहिब कहिंदे ने उदन इहदा आवा गुण मिट गया। इउं रतन जन्म का होए उधार। ए रतन जन्म दा उधार हो गया। एदा भला हो गया जीव आत्मा दा। ते मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी कहिंदे ने ए जिहड़ा हरी दा रस आ जिन्हां नूं मिल गया अमर हो गए। उन्हां मुड़के मुड़ना नहीं। उन्हां ने मुड़के किते नहीं आउणा। कोई जीव आत्मा चक्कर दे विच ना उस दिन तो ए अमर हो गई जिस दिन तो इनू अमृत मिल गया। अनंत अनंत जन्म दी बंदगी करन वाले बहुत सारे लोग जिन्हां नूं अमृत नहीं मिलिया। मैं सतगुरु दी हजूरी विच मेरे गुरु दी फिलोसफी मुताबक कह रहा वां कि उन्हां दा आवागमन नहीं मिटदा जिहड़ियां रूहां अमृत नहीं छकदियां। आखो सतनाम श्री। फिर आउणा पैंदा है फिर आउणा पैंदा है फिर आउणा पैंदा है। कहिंदे जी असीं बाणी बड़ी पढ़दे हां सिमरन बड़ा करदे हां जे अमृत ना छकीए ते साडी गति नहीं हो सकदी। नहीं हो सकदी। ए डंके दी चोट ते मेरे सतगुरु गरीब नवाज दे विचारां मुताबक दास राव जी दा कह रहा है कि जिन्ना चिर जीव आत्मा अपना सिर दे के गुरु दे चरणां विच मिटदी नहीं जिदन मिट गई उदन बन गई जिदन मिट गई उदन ही बन गई। जिन्ना चिर मिटदी नहीं जिन्ना चिर आण के डिगदी नहीं चरणां दे विच उन्ना चिर आवागमन मिटदा नहीं। मेरा सतगुरु गरीब नवाज पातशाह होर इशारे करनगे आखो सतनाम श्री। मेरे साहब नूं जदों सिद्धा ने पुछया सतगुरु जी तुसीं मैनूं कृपा करके दसना करो कि जे तुसीं हरिद्वार गए हो ते पांडे तुहाडे चरणां उत्ते डिगे ने ध्यान देना जित्ती नौ खंड पृथ्वी। बाबे ने कोई एक देश नहीं जित्या। बाबे ने दो देश नहीं जित्ते। यह ते साडी बदकिस्मती है कि धन गुरु नानक पातशाह दे चरणां ते चलण वाले प्रचारक मुक गए। धन गुरु नानक वर्ग वर्गे दरवेश प्रचारक नहीं इस कौम विच रहे। जे हरिद्वार गए ऐसे ज्ञान दे तीर मारे हरिद्वार दे पांडे पैरां ते डिग पए। जे जगन्नाथपुरी गए जगन्नाथपुरी वाले पैरां ते डिग पए। जे मक्के मदीने गए उत्थे मक्का मदीना गढ़ बगदाद नवाए के। बोलो गढ़ बगदाद आ नवाया ना तुसीं कहिंदे हो नवा दिता। टैलीविजन दे उत्ते रोज अखबारां च पढ़दे हो कि बगदाद नूं नवाता मगर इहनूं नवाउण नूं किन्ना चिर लगा ते की वरत्या।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਤੋਪਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਕ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਕ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਤੋਪ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਵਾਏ ਕੇ ਫਿਰ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਇਆ। ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਵੀ ਨਵਾਇਆ, ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਵੀ। ਬੀਬੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭ ਨਵਾਇਆ, ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ, ਗੜ ਬਗਦਾਦ ਨਵਾਇਆ। ਆਖਰ ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਕਿਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨਿਵਾਰੇ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਮਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿਵ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਲੇਵੇ ਬਾਲਾ, ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਕਲੀ ਮੈਂ ਹਮਰੇ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਿਆਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋਗੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਚੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਨ ਪੱਟਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਜੋਗ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਜਾਣ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀ ਤੁਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जोगाद सच खैपी सच नानक खुशी पी सच

सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जोगादि सच खैती सच नानक खुशी भी सच

पितर ते इनको डारो, आपन निकट बुलावो, अपनी विद आप जनावह, हर जन मंगल गावह, बिसर नाही कबहू ही ऐते, एहे बिद मन मैं पावह, गुरपुरा पीत्यो वड भागी, जन नानक कतह ना जावह, ना खौ जति सति नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म भया, परणवत नानक तिनकी शरणा, जिन तू नाही विसरया, परणवत नानक तिनकी शरणा, जिन तू नाही विसरया। परम सम्मान योग चवर शतर तख दे मालिक, जुगो जुग अटल साहिब सतगुरु, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, अमृत बचना दा सोदर रह राज साहब जी दा पाठ और उस तो उपरंत हजूर दे अमृत बचन कीर्तन रूप अंदर आप जी ने श्रवण कीते ने, आओ अपने ख्यालां नूं संकोच दे होए अंतर्मुख हो। कल दी जो आपां एक विचार दी लड़ी आरंभ कीती है, ओदे वल थोड़ा जिहा आपां पंछी झात जरूर पा लईए। कल आप जी दे चरणां विच बेनती कीती सी कि आखिर इस शरीर नूं धारण करन दा कोई मकसद है, ते संपूर्णता कीती सी कि आपां केवल इंद्रियां दे रस विच मस्त हो के शरीर दी बाजमुखी क्रिया तक सीमित हाँ, पर हकीकत विच ये पता है कि नहीं कि एक दिन इस शरीर नूं इस चोले नूं त्याग के जीव आत्मा ने जाना है, ते फिर इस जिंद दा सहारा कौन बनेगा, इस जिंद दा आसरा कौन होवेगा। ते संपूर्णता विच आप जी दे चरणां दे विच बेनती कीती सी कि केवल एक सतगुरु है जिस दा शब्द साडी जिंद दे नाल जांदा है, बाकी शरीर नाल तुरन वालियां दा काफला बहुत जिउंदियां भी मिलदा है, मरण तो बाद भी लोक नाल चलदे ने। पर एक बेनती आरंभ विच करदे आं, कई वारी इस भरम विच आपां रह जांदे आं कि कोई आदमी चलाना करदा है ते उस दी अर्थी नाल लोकां दी गिनती बहुत हुंदी, कई वारी ओहदे भोग ते लोकां दी गिनती हजारां लखां दी तादाद विच हो जाएगी, ते आपां सहज सुभाए कह दिंदे आं कि जिस बंदे दे भोग ते जिस बंदे दी अर्थी नाल लखां बंदे चले होण, आखिर रब दी दरगाह विच प्रवान हो ही गया होना है, क्योंकि ये इकट्ठ दसदा पे कि इस बंदे दी किन्नी कु बनी सी। सतगुरु गुरु नानक साहब ने बड़ा स्पष्ट बचन कहे, कहन लगे इस भरम नूं अपने मन विच ना पाली कि लोकां दी गिनती पिछे होवे ते रब दी दरगाह विच प्रवान हो जाईदा। साहब ने इक्को तुक विच गल मुका दित्ती, कहन लगे चंगा नाउं रखाए कै
जस कीरत जग ले ते इन्नी वड्डी रब दी रहमत होवे उम्र भी थोड़ी नहीं। साहब ने जो उम्र की गिनती की ते शब्द वरते जेजुग चारे आर जा खोर दसूनी खोए नवा खंडा भी जानिए नाल चला सब कोए चंगा नौ रखायक है जस कीरत जग ले। पर प्यारियो कि चंगा ना वाह वाह वाह वाह करान नाल ही प्रभु प्रवान कर लेंदा है। साहब कह लगे जे तिस नजर ना आवई ता वात ना पुछै के परमेश्वर दी नजर विच जे प्रवान नहीं ते सजना किसे ने तेरी वात नहीं पुछनी। आओ सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब दी अमृत बाणी ने कल एक उपदेश कीता सी के गुरु तो बिना जीव आत्मा दा उधार नहीं। उस लड़ी नूं आपां अज अगे तोरना है कि गुरु कैसा चाहिदा है, क्योंकि जदो शब्द गुरु धारण कर ली आउंदा है कई बार साडे सज्जन ये भी शब्द कह देंदे ने जेड़े केवल दंभ भेख पखंड तक सीमित ने। मैं आराम भी चर्ज कर दिया कि किसे ते कटाक्ष किसे ते तर्क नहीं, पर जो गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी जी ने सानू उपदेश दिता है कई बार ये भरम पाल लैने कि जेड़ी गुरु धारण करन दी गल कही ये शायद साडे गुरु ते लागू हुंदी है। वह कहिंदे गुरु ग्रंथ साहिब ही कहिंदा है कि गुरु तो बिना गुजारा नहीं। कोई किसे बंदे नू गुरु मनी बैठा है, कोई किसे नू गुरु मनी बैठा है। आओ आपां ये भी नखेड़ा बाणी विचों कर लईए कि कैसा गुरु चाहिदा है, उस गुरु कोल की रहमत है। उस तो अगे असी अमृत शब्द जो गुरु ग्रंथ साहिब विच आया है ते खंडे बाटे दे अमृत दी क्यों जरूरत है, इस दी विचार अज करांगे। करो किरपालता साध संगत दी, आप असीस बख्शो धन गुरु कलगीधर जी दे इस पवित्र पुरब नू। खालसा जी दे सिरजना दिवस नू आपां मना रहे हां ते अरदास करिए मेरे दाता जी किरपा करो जे अमृत दी दात लई है ते अंदर नाम अमृत दा निरंतर प्रवाह चल जाए, जे अमृत दी दात नहीं ते किरपा करके सानू अमृत दी दात बख्शो। विचार आरंभण तो पहला बेनती है कि एकाग्रता जरूर बख्शो, क्योंकि एकाग्रता तो बिना अंदर खिंड जाए ते विषय तो बंदा थिड़क जाता है। करो बख्शिश गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। कल विशा सी के मत को परम भूले संसार गुर बिन कोई ना उतर सपा, गुर करता गुर करने जोग गुर परमेश्वर खै पी होग। ते साहब ने उत्थे एक शब्द कह कहन लगे कहो नानक प्रभ ए जनाई। इस तुक वल ध्यान दिया जी, इत्थे शब्द नहीं है नहीं वरत्या कि गुरु ने मैनू गल जनाई। हजूर कहिंदे ने कहो नानक प्रभ ए जनाई, प्रभ दा अर्थ प्रभु करांगे वाहगुरु करांगे, कि मेरे परमात्मा वाहगुरु ने मैनू एक गल दी सोझी दिती। की सोझी दिती? कहन लगे बिन गुर मुक्त ना पाईए। भाई प्रभु ने गल समझा दिती कि गुरु तो बिना मुक्ति नहीं, गुरु ही तेरा मुक्ति दाता है। हुण सवाल उठिया भी गुरु कौन हुंदा है, ते एक बेनती करा असल विच बाणी विच गुरु गुर सतगुरु ते सतगुर शब्द बड़ी वरी आया है। हुण हजूर नूं पुछिए भी गुरु कौन हुंदा है, ए दो अखरां नाल बनिया है। असल विच गुरु शब्द ही ऐसा भावपूर्त है कि अपने आप विच गुरु शब्द बड़ी वड्डी रमज समो के बैठा है। जिहड़ा असीं शब्द गुरु पढ़ने इहदी उत्पत्ति इह शब्द की होंद आई है संस्कृत की ग्री धातु विचों इह पैदा होया है। दो अखरां नाल इह शब्द बनिया है, एक है गो ते दूसरा है रूह। गो का अर्थ अखरी हुंदा है हनेरा ते रूह का अर्थ हुंदा है चानण। गुरु का अखरी अर्थ ही यह है कि जेड़ा साडे अंदर दे हनेरे नूं खत्म करके चानण दा चिराग बाल देवे, शब्द दा दीपक बाल देवे, असल विच ओ गुरु है। ते अगली बेनती करा हुण गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पुछिए महाराज कि केड़ा गुरु हुंदा है, गुरु दी परिभाषा की है। मैं तीन चार प्रमाण दे के इस तो अगे तुरना अमृत दे विषय वल, क्योंकि ये गल नखेड़नी अत लाजमी है। असी भरम कई सज्जन पाल लैंदे ने
ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਲਈ ਕਹਿ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਦੁਰਵਰ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ

करके अंदर दे अवगुणा नूं कट देवे, अंदर ज्ञान दा सुरमा दे देवे, ते ओदी कृपा नाल शब्द दी कमाई करके इन्ना कु दम आ जाए कि बंदे दी जबान विचों निकले हुए शब्द लोक ते परलोक सच्चे हो जान, सच जानो, इस अवस्था नूं आनंद किया जांदा है। साहिब ने कहा है कि जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुर कही है, केड़ा आनंद? उथे हजूर ने बाणी विच कह आनंद आनंद सब को कह, अगली तो के आनंद गुरु ते जानिया कि गुरु नूं मिलके आनंद हुंदा, गुरु है ही ओ जिन्हों मिलके आनंद आवे। हुण इत्थे आनंद दे अर्थ दो चरिया खुशी खुशी नहीं। मैं फिर बेनती करदे हां, मान लो कोई मनुख गुरु नूं मिलदा है, आम देहधारी किसे नूं, ते उहदे घर पुत्तर नहीं, रब ने मेल कीती पुत्तर हो गया, कहिंदा देखो जी जिहड़ा बाणी भी शब्द आया गुरु नूं मिलके आनंद हुंदा है, मेरे घर पुत्तर आया ते आनंद आ गया, मेरे घर पैसे आए ते आनंद आ गया। नहीं गुरमुखो, आनंद की परिभाषा केवल पुत्र धियां समगरी जां ऐशवर्ज नहीं, आनंद असल विच अंदर दी एक अवस्था है जिहड़ा गुरु तो मिलता है। साहिब ने शब्द वरते आनंद आनंद सब को कह, आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते, किरपा करे प्यारिया कर किरपा किल वेख कटे, गुरु होवे जिहड़ा किरपा करके अंदर दे पाप खत्म कर देवे, कर किरपा किल वी कटे, ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह टुटा, गुरु ओ है जिहड़ा बंदे दे अंदर दे मोह नूं तोड़ देवे, अंदर दियां वकारां दियां तंदां तोड़ देवे, अंदरों जिनका मोह टुटा, तिनका शब्द सच्चा सवारिया। साहिब कहन लगे कह नानक एहो आनंद है, आनंद गुरु ते जाणिया, किन्ने असल विच आनंद देवे कि अंदर दे पाप खत्म हो जाण, अंदर ज्ञान दा चानण हो जाए। मैं बेनती कर रहा कि गुरु कौन है? साहिब ने पहला प्रमाण दिता कि जिस मिलिया मन होए आनंद सो सतगुर कही है, मन की दुविधा बिनस जाहे, जिन्हों मिलके अंदर दी दुपांति द्वैश खत्म हो जाए, हर परम पद लई है ओ है गुरु। होर सुखैन तरीके न समझना होवे ते मेरे दातार जी दे अमृत बचन आप सुखमनी साहिब जी दा पाठ कर दे, जेड़े सज्जन नहीं करदे ओह भी जरूर यतन करन कि गुरु अर्जुन देव जी दी अमृत गुरबाणी नूं पढ़न दा। हजूर ने एक सलोक विच सतगुरु दी परिभाषा दिती, ते उत्थे सतगुरु दी परिभाषा की इह शब्द वरते ने कि सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिस का नाउ, जिन्ने सत पुरख नूं जानिया है जिहड़ा परमात्मा दे विच अभेद है, सच जाणो निरंकार दा साकार रूप ही ओ है जिन्हें सतपुरख नूं जान लिया है। सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिस का नाउ, तिस कै संग सिख उदरै नानक हर गुण गाओ, जिस सतगुरु दे चरणा नाल जुड़ के सिख दा पार उतारा हो जाए, जिस सतगुरु दे चरणा नाल जुड़ के बंदे नूं परमेश्वर दा नाम अंदर वस जाए। हजूर ने कहा ये सतगुरु है। सतगुरु ने एक होर प्रमाण दिता, ओह कह के अगे तुरिए कि गुरु कौन है? धन गुरु ग्रंथ साहिब दी अमृत बाणी भी साहिब फरमाउंदे ने, कहिंदे ने गुरु ओ नहीं कि जिहड़ा दर दर ते अपने पेट दी खातर मंगण तुरदा है, कहिंदे ने गुरु ओ नहीं जिहड़ा अपनी खौमे नूं अंदरों पालदा पिया है, कहिंदे ने पूरे गुरु दी तां लक्षण ही इह वे कि पूरा गुरी बेमुहताज है, ओनू किसी के दर तो मंगना नहीं पैंदा, पूरा गुरु दाता है। दूजा शब्द वरत्या केवल दाता नहीं, पूरे गुरु कोल इन्नी कु ठंड है कि तपदे हिरदे भी शांत कर देंदा है। तीजा शब्द वरत्या कि पूरा गुरु तो एक बलदे हुए दीवे की तरह है, ते तिना अखरां तिना शब्दां नू किते सी पढ़ लईए कि गुरु की परिभाषा की है, गुरु दाता हुंदा है, गुरु ठंड का घर हुंदा है, ते गुरु जो ने ओ दीवे दी तरह चानन देंदे ने। सतगुरु ने इत्थे सतगुरु दी परिभाषा देंदे आ शब्द वरते, कहन लगे गुर दाता गुर हिवै घर, गुर दीपक त्यों लोए, सतगुरु एक दाते दी तरह ओ रहमतां वंडदे ने। एक बेनती करा गुरमुखो, अज जना खणा अपने शब्द नाल गुरु शब्द जोड़ी जांदा है, ते असीं लोक मन्नी भी जांदे आ, क्योंकि धन गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द नूं कमाणा ना अलूनी सिल चटना है, ये खंडे तार गली अत भीड़ी वाला मार्ग है। साहिब कृपालू जी

जो आवत शरण ठाकुर प्रभ तुम्हारी जिसे राखो हो कृपा तार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो हो लाज मुरार वाहे गुरु साहिब जीओ जित दिहाड़े तन बरी साहे ले लिखाए मलक जे कन्नी सुनींदा मोह दिखा ले जिंद निमानी कड़ी है

किजना बूझै है किजना सूझै, दुनिया गुजी पाहे। साईं मेरे चंगा कीता,

पानी नेड़े तेड़े नहीं, शीतलता नेड़े तेड़े नहीं, गुणा दा सरमाया नेड़े तेड़े नहीं, ते फिर अंदर अशांति रहेगा, अंदर तपदा ही रहेगा। यही कारण है कि गुरबाणी नूं ध्यान दे के पढ़ो। ते गुरबाणी ने यह बचन ऐलानिया डंके दी चोट दे उत्ते कह दिता कि अगन सागर बूढ़त संसारा, आख्या मनुख अग दे सागर दे अंदर डुबदा होया मैनू नजर पै रहा है। एक जगह दे उत्ते गुरु ग्रंथ साहिब जी इस तरह भी कहिंदे ने कि पहा बुलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप, जिन उपाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप। कहन लगे अग बल रही सी पर बुझ गई, पर पुछया किवें बुझ गई, आख्या रखंदड़ो प्रभ आप खुदावंद करीम दी किरपा दे नाल। जिन उपाई मेद ने पुछया जे तू भी अपने अंदर दी अग नूं बुझाउणा चाहुंदा है, ते जिन्ने प्रकृति कायनात कुदरत नूं जन्म दिता, जिन्ने उपाया नानक सो प्रभ जाप, उहदे गुणां दा जाप करना शुरू कर, उहदे गुणां नूं अपने अंदर वसाउणा शुरू कर, तेरे अंदर दी अग भी बुझ जाएगी। बलदी हुई अग जदों भी बुझेगी ना उदों जल दे नाल, औकड़ां दी अग जदों भी बुझदी है उदों गुणां दे निर्मल जल दे नाल। इक मैं बोल गुरबाणी विचों आप संगतां दे सन्मुख होर रखना चाहवांगा। हजूर कहिंदे ने चंदन चंद ना शरद रुत, मूल ना मिटे काम। संस्कृत भाषा दा लफज है काम, और हिंदी भाषा दे अंदर भी ए लफज अक्सर वर्तों विच आउंदा है। एही लफज काम दा अखरी अर्थ हुंदा है पित निकलने, जिन्हों आपां पंजाबी विच कह देने आ ना कि शरीर दे उत्ते गर्मी दा साड़ निकलिया, निक्के निक्के दाने पंजाबी विच कह दीदा है पित निकली, इन्हों हिंदी ते संस्कृत विच कह देंदे ने काम निकलिया, मतलब पिंडे शरीर दे उत्ते काम निकलिया, गर्मी दा साड़ निकलिया। ते काम कदी सर्दी दी रुत दे अंदर नहीं निकलदा, काम जदों में निकलदा है गर्मी दे कारण निकलदा है, गर्मी दी बहार विच निकलदा है, ते निकलदा गर्मी दे कारण है। चलो जे किधरे पहली गल सर्दी विच बनदा नहीं, जे बन जाए ते फिर शरीर दी वधी हुई गर्मी दे कारण। हुण सतगुरु कहिंदे ने कि चंदन नू रगड़ के, चंदन तसीर करके ना बड़ा ठंडा हुंदा है। आ जिहड़ा पंडित वीर पत्थर दे उत्ते चंदन नू रगड़दे ने, रगड़ के फिर मथे दे उत्ते लेप करदे ने, इहदा पुराने समय दे अंदर भाव इक्को ही हुंदा सी कि सिर ठंडा रहे, दिमाग ठंडा रहे, चंदन दा लेप मथे दे उत्ते करो मस्तक ठंडा रहे शीतल रहे, इहदा दूसरा कोई भाव नहीं सी। सहजे सहजे ओ चंदन दा लेप धर्म दे नाल ब्राह्मणा ने जोड़ दिता। खैर उन्हां दा काम है, उन्हां नूं मुबारक, मैं ते केवल उदाहरण तुहाडे सामने रखनी है। अज तुसी मत्थे ते वेखो तीन लम्मियां तारियां दा तिलक ओ चंदन दा तिलक, चंदन तसीर करके बड़ा ठंडा है। चंदन नूं रगड़िया जाए, चंदन दा लेप बनाया जाए, ते ओ लेप पूरे शरीर दे उत्ते कीता जाए, ते उस चंदन दे लेप दे नाल शरीर दा काम, शरीर दी गर्मी मुक जांदी है, खत्म हो जांदी है। और सतगुरु कह रहे ने, गुरु ग्रंथ साहिब जी कहिंदे ने चंदन नंबर एक दे उत्ते चंदन, नंबर दो दे उत्ते चंद्रमा दियां ठंडियां ठंडियां किरणां, उहदे नाल भी शरीर दे काम नूं आराम मिलदा है। चंदन चंद नंबर तीन दे उत्ते ना शरद रुत, ते जे शरीर दे उत्ते निकलिया होवे काम, बहार आ जाए सर्दी दी, गर्मी चली जाए सर्दी आ जाए, ते शरीर दा साड़ शरीर दी गर्मी तां मुक जांदी, काम दा रोग तां खत्म हो जांदा। पर जे काम मन दे अंदर होए, गर्मी मन दे अंदर वधी होवे, ते वधी होवे औगुणा दे कारण, ना ओ देश बदलन दे नाल मन दा काम मिटदा है। आप देश बदल के वेख ही चुके हो ना, हिंदुस्तान नू छड्या कनेडा दे वासी बने, इंग्लैंड दे वासी बने, अमेरिका दे अंदर चले गए, यूरोप दे वसनीक बन गए, देश बदलिया ही है ना। देश बदलन तो बाद तुहानू तजर्बा हो ही चुका है ना कि देश बदलन दे नाल मन दा विचार नहीं बदलिया, मन दी सोच नहीं बदली। अगर मन ईर्षालू इंडिया दे अंदर से, ते अज वी मन ईर्षालू साडे पास ही, इत्थे आण के कोई ईर्षा घट गई, मैं घर तबाह होंदे वेख रहा ईर्षा की अग्नि के अंदर।

इच्छा रहया दूर, देख फरीदा ज्योतिया दाढ़ी हुई पूर, अगों नेड़ा आया इच्छा रहया दूर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पवित्र अते निघी गोद दा आनंद माण रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, मन बिरतियां इकागर करके गुरु दरबार विच बैन अते सुनन दी कृपालता करियो। एक नुकता हमेशा ध्यान दे अंदर रखन योग है, एक वक्त दे अंदर एक कम करन दी अपने आप नूं आदत पाओ। ऐस वक्त तुसी ना ते दुकान उते हो, ना ऑफिस दे अंदर हो, ना अपनी कोई होर किरत विरत काम धंधा ही कर रहे हो। शरीर करके इस वक्त कोई होर काम धंधा करना भी चाहो ते कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि शरीर ते गुरु दरबार विच है। तो फिर जे शरीर गुरु दरबार विच है ते फिर इस तरह का सुभाव बनाओ कि उन्ना समा मन भी गुरु दरबार विच ही रहे। इस वक्त अगर मन करके तुसी ऑफिस वे चले गए, दुकान ते चले गए, किरत विरत वे चले गए, वो भी नहीं होएगी ते जो इत्थे हो रहा है वो भी पल्ले नहीं पएगा, उहदा भी लाभ पूरा पूरा नहीं मिलेगा। जितना समा गुरु दरबार दे अंदर तन हाजर रहे यतन करना चाहिदा है, उन्ना समा नाल लगदा मन नूं भी बिठाउंदा। कोई काम विगड़दा होवे उठ के जा सकदे आ, तन करके भी चलो मन करके भी उत्थे रहिए, पर जिन्ना समा इत्थे हां इत्थे ही रहिण दी कृपा करिओ। चल रही लड़ी वार कथा विचार भगत फरीद साहब जी दे सलोकां विचों आप रोज सवेर दे वक्त सुनदे आ रहे हो। अज जो दो सलोक बाबा फरीद साहब जी दे आप संगतां दे सन्मुख पढ़े गए, पहला श्लोक है फरीदा जां तो खट्टन वेल तां तूं रत्ता दुनी सिओ। कहन लगे जेड़ा खट्टी खट्टन दा वेला सी, खट्टन मैने कमाउन, वेल मैने वकत, जेड़ा खट्टी खट्टन दा वकत सी, लाभ कमाउन दा वकत सी, तां तूं रत्ता दुनी सिओ। उस वकत ते तू इधर ध्यान ना दिता ते दुनियादारी दे तंदे दे अंदर उलझिया रहा। कहन लगे ध्यान ना दिता। एक बेनती मैं होर भी करां, उम्र दे तकाजे दे नाल हर काम करन दा अपना अपना साडे समाज दे अंदर विहार प्यार बनिया है। उम्र दे तकाजे दे नाल बचपन दे अंदर साडी जिम्मेवारी स्कूल दे अंदर जाके चार अखरां दी तालीम लैनी है ते बच्चा स्कूल दे अंदर चला जांदा है। जवानी दे अंदर किरत विरत धंधा करना ते बंदा कर रहा है। बुढ़ापे दे अंदर चाहिदा है कि चलो जो हुण कमाया है आराम दे नाल उनू बह के भोगे भी, तियां पुत्रां दे अंदर बह के आराम दे नाल चल पाए, और इस तरह होना भी चाहिदा है। परमात्मा सब दियां लोड़ां पूरियां भी करे। अर्ज मैं ये करनी चाहुंदा सां कि बचपन दा समा पढ़ाई वास्ते तलीम वास्ते बकायदा नियुक्त है। ते जे बंदा ये गल कहे कि बचपन ते मैं अचेत पुणे दे अंदर गवा लवां, बच्चे नूं स्कूल की तोरना है, बच्चा रोंदा है, बच्चे दा मन नहीं करदा, इनू स्कूल ना तोरीए, जेड़े मां बाप बच्चियां दे उत्ते इस तरह की दया कर जांदे ने, उन्हां दे बच्चे उन्हां नूं सारी उम्र वास्ते कदी बख्शदे नहीं। जद बच्चे वड्डे होणगे बख्शणगे नहीं। अगर तुसी जवाब वजों ए गल कहो कि बेटा उदों तू रोंदा बड़ा सी, तैनू तां स्कूल विच नहीं तोरिया, ओ
ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਬੜਾ ਸੈਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਨਾ ਹੀ ਤੋਰੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇ, ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਅਗੋਂ ਪਰਤਵਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸਮਝ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਨਿਆਣਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਏ, ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ

परमात्मा की भुख लेके आ रहे हो ते हुण एक जुट होके रब जी दे राह दे उत्ते चलना शुरू कर दियो। तौली रावे कोए अगे कहिंदे ने कर साई स्यो पिरहड़ी। पिरहड़ी दा मतलब हुंदा है प्रेम। कहन लगे अपने साई जी दे नाल प्रेम कर, परमात्मा दे नाल प्रेम कर। रंग नवेला होए तेरे जीवन दे अंदर बहार ही नवी बन जाएगी, रंग ही नवा बन जाएगा, जीवन दे अंदर आनंद ही नवा बन जाएगा। पर कद बन जाएगा जद साई जी दे नाल परमात्मा दे नाल तेरी प्रीत बनेगी, तेरा प्रेम बनेगा। इत्थे एक बेनती मैं आप संगत दे सामने करदा चला। एक नित नेम करन वाले दा मन, नित नेमी दा मन मैला हो सकदा है। मेरी मुकम्मल बेनती नूं सुनन तो बाद नतीजे दे उत्ते तां पहुंचियो। एक नित नेम करन वाले नित नेमी दा मन मैला हो सकदा है। ते जद कोई नित नेमी नित नेम करदा है, जरूरी ते नहीं कि जिन्ना समा नित नेम चलदा है मन पवित्र ही हुंदा है, मन दे अंदर कोई मैल आउंदी ही नहीं, मन किधरे तोड़दा ही नहीं, मन दे अंदर मैल बन जांदी है। पढ़ रहे है जपजी साहब, पढ़ रहे है सुखमणी साहब, हत्थां विच गुटका नजरां टिकियां ने बाणी दे उत्ते, जुबान बाणी दा अलाप कर रही है, बाणी नूं जपदी है, मन दे अंदर कोई मैल दी धारा चलदी है, मन दे अंदर कोई मैले विचार चलदे ने। तो मूल रूप विच कह लो कि नित नेमी दा मन नित नेम करदिआं मैला हुंदा है। जितने आप नेमी प्रेमी हो, सारे गुरबाणी दा पाठ पठन करदे हो, रौला भी लाउंदे हो, गुरु की ताबिया बह के पाठ करदिआं वी पाठी दा मन मैला हुंदा है। खिमा चाहवांगा मैं उदाहरण बना के अर्ज करनी चाहुंना, पाठ करदिआं पाठी दे मन विच मैल आ सकदी है, सेवा करदिआं सेवादार दे मन विच मैल आ सकदी है। मैं अपनी गल करां, कथा करदिआं करदिआं, कथा वख्यान करदिआं करदिआं मन विच मैल आ जांदी है, कीर्तन करदिआं करदिआं मन विच मैल आ जांदी है। पर जिस वक्त आप गुरु दे नाल प्रेम कर रहे हो, उस एक पल नूं नोट करके वेखना, उदों मन दे अंदर मैल नहीं हुंदे। हुण इस तरह कह लो, पाठी दा मन नित नेमी दा मन सेवादार दा मन निर्मल हो सकदा है, प्रेमी दा मन मैला नहीं हुंदा। उहनां दे मन दे अंदर मैल आ सकदी, इत्थे मैल नहीं हुंदी प्रेमी दे मन दे अंदर। जदों तुहाडे मन दे अंदर किधरे सतगुरु जी दे संबंध विच प्रेम दा विचार चले, प्रेम दी निर्मल तारा चले, ते फिर उहनां पलां नूं नोट करके वेख्यो, मन दे अंदर ना कोई वासना, ना काम, ना क्रोध, ना निंदा, ना चुगली, प्रेम इतना बलवान है कि जद ओह मन विच आण के वसदा है ते ओह सारिआं नूं इत्थों दुड़ा के बाहर कर दिंदा है, आप ही उत्थे रहिंदा है। पर शर्त यह है कि प्रेम मुकम्मल तौर ते आउणा चाहीदा है। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਸਾਈ ਸਿਉ ਪਿਰਹੜੀ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਈ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਔਗਣਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਔਗਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਔਗਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਗਣ ਬੜੇ ਨੇ ਪਰ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਔਗਣ ਔਗਣ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਗਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਔਗਣ ਔਗਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂੜੀ ਦੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ ਹੱਸਦਿਆਂ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਝਦਾਰ ਉਸੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੇ ਢੇਰ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਨੱਕ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗਾਉਣਾ, ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਸਣਾ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੱਕ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਦਬੋ ਦੁਰਗੰਧੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਾ ਆਵੇ, ਨੱਕ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਮਗਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਤੂੰ ਨੱਕ ਦਬਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ?

फरीदा थियो पवाही तब जे साई लोड़ें सब एक छिज है बिया लताड़िया है ता साई दे दरबाड़िया है।

जानई सिर पी मिट्टी खाए। फरीदा मैं पुलावा पगदा मत मैली होए जाए। गैला रूह ना जानई सिर पी मिट्टी खाए। फरीदा शक्कर खंड नीवात गुड़ माखियो मांजा तुत। सबे वस्तु मिठियां

मिठिया रब ना पूजन तुद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरबान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, आप चल रही लड़ीवार कथा भगत फरीद साहब जी दे श्लोकां विचों सरवण करदे आ रहे हो। मन बिरतियां एकागर करो, इस श्लोक नूं आधार बना के कुछ समझन ते समझाउण दा यतन करिए। फरीद साहब जी दा फरमान फरीदा मैं भुलावा पग दा मत मैली होए जाए। कहन लगे मनुख इस परम विच ते रहिंदा है के बारों मेरे सिर दे उते बजी हुई पग मैली ना होए। हकीकत है कि मनुख नूं जितनी खबर बाहर दी है उना ही अंदर दी तरफों अनजान है। बाहर दे बारे समझ आ गई है, अंदर दे बारे समझ नहीं आई। अगर आई है ते बहुत थोड़ी आई है। यही कारण है जिन्ना साफ सफाई का ध्यान बाहर है उन्नी सफाई का ध्यान अंदर नहीं है। तन साफ होना चाहिए सब की तमन्ना है, मन साफ होना चाहिए किसी विरले विरले की लोचा है, सब की तमन्ना यह नहीं है। उस तो बाद तन दे कपड़े घर बार मोटर कार हर जगह जो शरीर दे बैन उठन दे कम आउंदी है वो साफ सुथरी चाहिदी है। इत्थे सब नूं पता है, पर जिथे दीन दयाल निरंकार नूं वसदा रसदा वेखना चाहुंदे आ मन साफ चाहिदा है। ये किसे विरले विरले नूं पता है, सब नूं नहीं पता। तो इस तरह कह लिए कि लोग बाहर मुखी जीवन गुजार रहे ने, अंतर मुखी जीवन नहीं गुजार रहे। जब भी कोई रब जी दे राह दे उते अपने कदम रख के चलना शुरू करता है उदा ध्यान बाहरों हट के अपने अंदर वल जाना शुरू होता है। तो जब ध्यान अंतर मुखी होता है समझ आउंदी है अंदर बहुत कूड़ा करकट मैल ही मैल पई है, तो अपनी मैल नूं वेख के बंदा आप ही बेचैन हो जांदा है कि इतनी सारी मैल। अपनी मैल नूं वेख के अपने आप तो आप ही नफरत कर बैठदा है, इतनी सारी मैल ते ओह वी मेरे अंदर। मैं ते समझदा सा नहीं है पर बहुत ज्यादी है, बहुत ज्यादी। तो खैर ईसाई जगत दे अंदर ईसाई जगत दे बानी हजरत ईशा जी उन्होंने रब तो बाद नंबर दो दे उते सफाई नूं ही दर्जा दिता है। हजरत ईशा जी क्या करदे सन कि परमात्मा तो बाद अगर कोई साडा करना कर्म धर्म फर्ज बनदा है तो ओ ए है कि बाहर भी सफाई होवे ते अंदर भी सफाई होवे। चलो अंदर दी सफाई दे संबंध विच हर पैगंबर ने अवतारी तेरे बरी पुरश ने जोरदार बचना विच किया है कि मन पवित्र चाहिए साफ चाहिए। पर हजरत ईशा दी बाहर दी सफाई दे उते भी बड़ा जोर देंदे ने ते अंदर दी सफाई दे उते भी बड़ा जोर देंदे ने। जद तो मनुख ने होश संभाली है उदों तो लैके मैल अपने बाहर भी वेखदा आ रहा है ते मैल अपने अंदर भी वेखदा आ रहा है। ते फिर बाहर दी मैल दे संबंध विच इहदी कोई जानकारी है, इहनू कुछ ज्ञान है ते बाहर दी मैल नूं धोण दे इह साधन लभदा रहा, साधना दी खोजबीन करदा रहा ते बाहर दी मैल नूं हटाउण दा यतन भी करदा रहा। ओ मैल चाहे तन दे उते या फिर तन दे उते पए होए कपड़िया दे उते उस मैल नूं धोण दे साधन जुटाउंदा रहा, साधन लभदा रहा।
मैल हटाना इहदा लक्ष्य है। साधन बदलते रहे ने, हुण भी बदल रहे ने, बदलते रहेंगे। साधन दे नाल फर्क नहीं पैंदा। गल ते इह है कि अंदर मैल ना रहे, कपड़े दे उत्ते मैल ना रहे। एक बेनती मैं भी करदा चला, बाहर दी मैल जो साडे शरीर जां शरीर ते पाए हुए कपड़िया दे उत्ते या सज्जे खब्बे मैल दिसदी है, एक गर्दो गुबार मिट्टी घटे दे कारण है। बाहर दी मैल गर्दो गुबार मिट्टी दे कारण है, ते अंदर दी मैल बुरा वेखना, बुरा बोलना, बुरा सुनना, बुरा सोचना इस दे कारण है। जो अंदर मैल बनती है वो बुरा वेखन बोलन सोचन करके बनती है। जो बार मैल बनती है वो मिट्टी कट्टा हनेरी तूफान गर्दो गुबार इहदे कारण मैल बनती है। बार दी मैल अंदर नहीं जाती है, और अंदर दी मैल ये साडे इंद्रियां दे राही बदल बदल के बार आउंदी रहिंदी है। तन गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी की पवित्र बाणी है, कहन लगे भरिए हथ पैर तन देहे पानी तोते उतरस के है। ये बाहर दी मैल है। अगर हथ पैर भर जाते ने तो पानी नू वरतों विच लै आओ मैल उतर जाएगी, साबण नू वरतों विच लै आओ मैल उतर जाएगी। भरिए हथ पैर तन देहे पानी तोते पानी दे नाल तो लो उतरस खेहे लगी हुई मैल उतर जाएगी चली जाएगी। मूत पलीती कपड़ होए देसा गुण लईए उह तोए, अगर कपड़े भी किधरे चिकड़ लवरेज हो गए ने ते कह लगे साबुन दी वरतों करन दे नाल ओ भी उजले हो जाणगे साफ हो जाणगे। पर किसी ने प्रश्न किया साहब जी अंदर दी मैल नू धोण वास्ते केड़ी सरफ ते केड़ा साबण ते केड़ा पानी वरतों विच लियाईए मैल अंदर चली जाए, ते अंदर दी मैल नू बाहर कढ़ना होवे धोना होवे तो फिर प्रश्न साडा ए धुपेगी किवें। हजूर कहिंदे ने कि परिये मत पापा कै संग उह धोपै नावें कै रंग। गुरबाणी दे अंदर लफज जिहड़ा आया ना उह पाप आया है, अपराध नहीं आया। इस जगह दे उत्ते इस तरह नहीं है कि अपराध लफज आया नहीं, पर इस जगह दे उत्ते कहन लगे भरिए मत पापा कै संग, क्योंकि पाप बीज है ते अपराध उस बीज तो वधन फुलन वाला दिसन वाला बूटा है। पाप जड़ है ते उस पाप दी जड़ दे सहारे दे उत्ते जिहड़ा पनपन वाला है वह अपराध नाम का बूटा है। इस तरह कह लो पाप अंदर हुंदा है ते अपराध बाहर हुंदा है, भावे दोवे गुणा दोवे दोष दोवे तरह की मैल है, पर पाप मन दे नाल संबंध रखता है ते अपराध तन दे नाल संबंध रखता है। जो तुहाडे अंदर माड़ी सोच चल रही है, बुरी सोच चल रही है, कामुक सोच, क्रोध, निंदा, चुगली, ईर्षा, तरह तरह दियां बुरियां विचारां जो चल रही ने, उहदा नाम पाप है। उस पाप तो अगे आण के जिहड़े बुरे कर्म करने असीं शुरू कर देने आ उहदा नाम अपराध है। अपराध नूं डर हुंदा है हथ घड़ी दा, कानून दा, समाज दा, पर पाप नूं ते भी डर नहीं है, क्योंकि पाप तां किसे दी निगाह जांदी नहीं है। पाप ते किधरे मंदर मस्जिद दे अंदर बह के भी कीता जा सकदा है। खिमा चाहांगा की सोच रहे हो तुसीं इस वक्त मन दे अंदर, कोई दूसरा ते नहीं जानदा। बिल्कुल तुहाडी बगल दे अंदर तुहाडे नाल बैठा होया दूसरा प्रेमी दूजा सतसंगी नहीं जानदा तुहाडे मन दे अंदर की विचारां दी तारा चल रही है। पर तुहाडे तन नूं ते आपां वेख ही रहे हां, सारे एक दूजे नूं वेख ही रहे हो कि तन आराम पूर्वक बैठा है, मन भी बैठा है, नहीं बैठा है ते तुहानूं पता है या सतगुरु नूं पता है। तो पाप ना कानून दी पकड़ विच आउंदा है, ना समाज दी पकड़ विच आउंदा है, अगर आउंदा है ते धर्म दी पकड़ विच आउंदा है, निरंकार दी पकड़ विच आउंदा है। निरंकार जानदे ने अंदरों असी मैले हां, अंदरों असी पवित्र हां, निरंकार जानदे ने। दूसरे जो भी फैसला लेंदे ने वह साडे बार मुखी जीवन नूं वेख के फैसला लेंदे ने। साडा बहना उठना चंगा है, तुरना फिरना चंगा है, बोल बाणी चंगी है,
लोग कह देंदे ने गुरमुख है, पर मैं गुरमुख हाँ मनमुख हाँ, यह मैनू खुद नू पता है ते या सतगुरु साहब जी नू पता है, गुरु ग्रंथ साहब जी नू पता है। खैर मैं एक बेनती करदे चला, डॉक्टर इकबाल ते इस तरह भी कहिंदे ने कि एक ही चेहरे पे हजार चेहरे बना लेते हैं लोग, यही चेहरा गुरुद्वारे दे अंदर कुछ होर दिसदा है, यही चेहरा दुकान दे उत्ते किसी होर रंग विच दिसदा है, यही चेहरा किधरे कारोबार दे अंदर होर रंग पकड़ के अपने उत्ते जमाया होया दिसदा है, यही चेहरा मां दे सामने हो रहे, पत्नी दे सामने हो रहे, धी दे सामने हो रहे, समाज दे सामने हो रहे, ते गुरुद्वारे दे अंदर हो रहे। गिरकट अपने रंग बदलदा है, मनुख अपने चेहरे दे मखौटे बदलदा है, ते मखौटे बदलन दी इहनू बड़ी चंगी तरह जांच है। मखौटे किवें बदलने ने, किधरे गमी वाली जगह ते चला गया है, किधरे अफसोस करने वास्ते किसी दे घर वे जाना पिया है, उत्थे कोई सोख समाचार है, इहदे अंदर भावे गमी नहीं पर चेहरे दे उत्ते बनावटी गमी दा मखौटा पाउणा इहनू आउंदा है कि बनावटी गमी चेहरे दे उत्ते किवें लियाई दी। किधरे खुशी वाली जगह ते चला गया है, किसी दे व्याह दे अंदर, किसी दे बच्चे दे जन्मदिन दे अंदर, किसी दे कारोबार दी ओपनिंग दे अंदर चला गया है। अंदर भावे जैलसी है, अंदर भावे ईर्ष्या है, पर बनावटी खुशी दा मखौटा बना के उन्हां नूं बधाई देण दी इहनू बड़ी चंगी तरह आदत है, कुशल है। ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਕਦੋਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮੀ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਕਦੋਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਾਪ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਬੁਰਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਪਰਾਧ। ਬਸ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਪਰਾਧ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਪਾਪ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਪ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰਹਿ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪਣਪਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਪਰਾਧ ਬਣੇਗਾ ਕਿੱਥੇ। ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਬ ਦੀ ਗੁਠਲੀ ਬੀਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੰਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬੂਟੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਬੀਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੂਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੱਲ ਜੜ ਤੋਂ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ, ਉਪਰੋਂ ਉਪਰੋਂ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਟਹਿਣੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਪਾਪ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹ ਮਿਟਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਪਰੋਂ ਉਪਰੋਂ ਪੱਤੇ ਝਾੜ ਦਿਓ, ਪੱਤੇ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਲ ਫੇਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਟਹਿਣੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੇ ਟਹਿਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਟਹਿਣੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਜੜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੜ ਨਾ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਨਾ ਫੁੱਲ ਆਉਣਗੇ, ਨਾ ਫਲ ਆਉਣਗੇ, ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰਿਆਲੀ ਆਏਗੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੱਲ ਜੜ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਭਰਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਬਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਫ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਕਵਡ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਲ ਧੁੱਪੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਲ ਜਾਵੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਧੁੱਪੇ ਨਾਵੇਂ ਕਹਿ ਰੰਗ, ਧੁੱਪ ਜਾਏਗੀ, ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ। ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰੰਗ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਪਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੋਚ ਕਰੇ ਦਿਨਸ ਰਾਤ, ਇਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਸੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋਚਣਾ, ਸੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਸੋਚ ਸੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ, ਤਨ ਸੁੱਚਾ ਰੱਖਣਾ। ਸੋਚ ਕਰੇ ਦਿਨਸ ਰਾਤ,
मन की मैल न तन ते जात। कहन लगे दिन पर रात बारों सुचा हुंदा यतन करदा रहे, बिंद बिंद हाथ धोंदा रहे, बारों तो बिल्कुल पवित्रता रखण विच कामयाब दिसे। पर कहन लगे इस तरह करन दे नाल तेरे मन नू की असर पएगा। ठीक है लोकां दे सामने इन्नी को तेरी इमेज बन जाएगी बड़ा पवित्र है, बड़ा सुचा रह के चल रहा है, ए बिल्कुल भी झूठ दे नेड़े तेड़े नहीं जांदा, ब्राह्मण वांग बड़ी सुचता है, बड़ी पवित्रता है। पर तेरी उस सुचता दा मुल तां ही पैंदा है जे मन सुचा होवे। अगर मन सुचा नहीं तो फिर इस बारी पवित्रता दा ते बारी सुच दा कोई मैना नहीं, कोई अर्थ नहीं है। मेरा मतलब यह नहीं है कि आप गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ताबिया विच बहना चाहो ते लिबड़े तिबड़े आन के बह जाओ, तन साफ नहीं चाहिदा, यह मेरा मतलब नहीं है। जिहड़ी विखावे दी वाधू सोचे मैं उहदी गल कर रहा, जिहड़ी पखंड दे अंदर लेके चली जांदी उहदी गल कर रहा। हुणे आप श्री आसा जी दी वार दा कीर्तन सुन के हटे हो, पातशाह एक सलोक दे अंदर कह रहे सन गुरु नानक देव पातशाह के देके चौंका कड्डी कार, उपर आए बैठे कुड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, एहो अन्न असाडा फिटे, तन फिटे फेड करेन, मन झूठे चुली प्रेन। अखीर दे उत्ते कहिंदे ने कहो नानक सच त्याईए, सुच होवे तां सच पाईए। हुण एक बेनती मैं होर करां, जे कोई तुहाडे ते प्रश्न करे भी तुहाडा गुरु उत्ते ते गल करदे ने भी चौंका देना, गोबर दे नाल लेप करना, कार कढ़नी, लकड़ियां धो के बालनियां, ये पवित्रता इहदा खंडन कर रहे ने, ते अखीरली पंक्ति विच जाके कह रहे ने सुच होवे तां सच पाईए, तो फिर गल विरोधी लगेगी ना, भी अखीरली पंक्ति विच कह रहे ने सुच होएगी ते तां सच मिलेगा। पर प्यारियो इहदा थोड़ा जिहा विश्राम दा ही भरम है, विश्राम देना तुहानू आ गया ते अर्थ अपने आप साफ हो जाएगा। हजूर कहिंदे ने कहो नानक सच त्याईए, सुच होवे तां, सुच हुंदी तां है सच पाईए, सुच बनदी तां है जे सच मिल जाए, सुच होवे तां, तां सुच बनदी है अंदर दी, सच पाईए जे सच दे गुणा नूं अपने हृदय विच वसा लवे। ते असीं की पढ़ के निकल जाने, सुच होवे तां सच पाईए। असीं एक विश्राम दे कारण अर्थां दे अंदर जमीन शमान